0: Enjoy quality and tasty 100% authentic halal Chinese and Thai food from Gao Express. Brought to you by the team behind Topps Pizza in Luton. Choose from all your delicious Chinese and Thai favourites. Then order for delivery or collection from Gao Express in Wellington Street, Luton, Marketplace Stevenage, and now also on Nightingale Road in Hitchin. Open daily midday till late. Find the number or order online at Gao, that's G-A-O, express.co.uk or like Gao Express on Facebook.
1: अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम किरण है। कोट कश्मीर ऑर्फन्स रिलीफ ट्रस्ट मेरा एक खूबसूरत घर है, जहां मेरे साथ सैकड़ों यतीम और बेसहारा बच्चों की तालीम व तरबियत और पुरसकून माहौल में परवरिश हो रही है, और ये सब कुछ आपके तावन से मुमकिन है। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह करीम आपको सदा सलामत रखे, और उम्मीद है कि आप इसी तरह अपना प्यार मोहब्बत और तावन जारी रखेंगे। कोट UK ऑफिस 03001237474.org.uk।
2: Allah. Every verse has a message. Every reflection brings new understanding. Take a moment to listen, to think, and to draw closer to the words of the Quran. This is Tadabbur al-Quran, where we reflect, learn, and grow together. Join us as we explore the timeless guidance of the Holy Quran. Join me, Sheikh Ahmed, on Tadabbur al-Quran every Tuesday at 10 a.m.
3: From the studios of Inspire FM, the time is now 8 o'clock.

0: मूव फॉर 10 आ गया है दिस गर्ल कैन का नया चैलेंज, जिसमें हर कोई शामिल हो सकता है। बस 10 मिनट मूव करें महीने में 10 दफा। मुझे तो अब ज्यादा ही एनर्जी फील हो रही है और कॉन्फिडेंस भी।
1: अब मेरी नींद भी पहले से बेहतर है। सुबह की हल्की सी स्ट्रेचिंग हो या पार्क में तेज वॉक, कोई प्रेशर नहीं, कोई स्ट्रिक्ट स्केड्यूल नहीं। जब आपके लिए ठीक हो बस मूव करें। मैं पहले ही 3 सेशंस कर चुकी हूँ और बहुत अच्छा फील कर रही हूँ। पूरे मुल्क की खवातीन इस महीने 10 मिनट 10 दफ़ा मूव कर रही हैं। आप भी ज्वाइन करें, सर्च करें दिस गर्ल कैन मूव फॉर 10।

0: आपको पत्थर मार रहा है, यहां तक कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एड़ियां खून से तर हो गई हैं, और वो कहता जाता है कि ये झूठा है, इसकी बात ना मानो। मैंने लोगों से पूछा ये कौन है, लोगों ने कहा ये इनका चाचा अबू लहब है। तिर्मिजी। नबूवत के सातवें साल जब कुरैश के तमाम खानदानों ने बनी हाशिम और बनी अलमुत्तलिब का मुआशरती और मुआशी मुकातिया किया और ये दोनों खानदान रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिमायत पर साबित कदम रहते हुए शेबे अबी तालिब में महसूर हो गए, तो तन्हा यही अबू लहब था जिसने अपने खानदान का साथ देने के बजाय कुफ्फार कुरैश का साथ दिया। ये मुकातिया 3 साल तक जारी रहा और इस दौरान में बनी हाशिम और बनी अलमुत्तलिब पर फाकों की नौबत आ गई। मगर अबू लहब का हाल यह था कि जब मक्का में कोई तिजारती काफिला आता और शेबे अबी तालिब के महसूरीन में से कोई खुराक का सामान खरीदने के लिए उसके पास जाता तो ये ताजरों से पुकार कर कहता कि इनसे इतनी कीमत मांगो कि ये खरीद ना सकें, तुम्हें जो खसारा भी होगा उसे मैं पूरा करूंगा। चुनाचे वो बेतहाशा कीमत तलब करते और खरीदार बेचारा अपनी भूख से तड़पते हुए बाल बच्चों के पास खाली हाथ पलट जाता। फिर अबू लहब उन्हीं ताजरों से वही चीजें बाजार के भाव खरीद लेता। इब्ने साद और इब्ने हिशाम। ये इस शख्स की हरकत थी जिनकी बिना पर इस सूरा में नाम लेकर इसकी मजम्मत की गई। खास तौर पर इसकी जरूरत इसलिए थी कि मक्का से बाहर के अहले अरब जो हज के लिए आते थे या मुख्तलिफ मकामात पर लगने वाले बाजारों में जमा होते, उनके सामने जब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अपना चाचा आपके पीछे लगकर आपकी मुखालिफत करता तो वो अरब की मारूफ रिवायात के लिहाज से ये बात खिलाफ तवक्को समझते थे कि कोई चाचा बिला वजह दूसरों के सामने खुद अपने भतीजे को बुरा भला कहे और उसे पत्थर मारे और उस पर इल्जाम तराशिया करें। इस वजह से वो अबू लहब की बात से मुतासिर होकर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में शक में पड़ जाते। मगर जब ये सूरा नाजिल हुई और अबू लहब ने गुस्से में बिफर कर औल फौल बकना शुरू कर दिया तो लोगों को मालूम हो गया कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुखालिफत में इस शख्स का कौल काबिल एतबार नहीं है, क्योंकि ये अपने भतीजे की दुश्मनी में दीवाना हो रहा है। इसके अलावा नाम लेकर जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा की मजम्मत की गई तो लोगों की ये तवक्को हमेशा के लिए खत्म हो गई कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दीन के मामले में किसी का लिहाज करके कोई मदाहनत बरत सकते हैं। जब अलल ऐलान रसूल के अपने चचा की खबर ले डाली गई तो लोग समझ गए कि यहां किसी लाग लपेट की गुंजाइश नहीं है। गैर अपना हो सकता है अगर ईमान ले आए और अपना गैर हो जाता है अगर कुफ्र करे। इस मामले में फलां इब्ने फलां कोई चीज नहीं है।
1: बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
0: शुरू अल्लाह के नाम से जो रहमान और रहीम है।
1: तब्बत यदा अबी लहब वतब।
0: टूट गए अबू लहब के हाथ और वो नामुराद हो गया।
2: इस शख्स का असल नाम अब्दुल उज्जा था और उसे अबू लहब इसलिए कहा जाता था कि उसका रंग बहुत चमकता हुआ सुर्ख व सफेद था। लहब आग के शोले को कहते हैं और अबू लहब के मानी है शोला रूह। यहाँ उसका जिक्र उसके नाम के बजाय उसकी कुन्नियत से करने की कई वजूह हैं। एक ये कि वो ज्यादातर अपने नाम से नहीं बल्कि अपनी कुन्नियत ही से मारूफ था। दूसरे ये कि उसका नाम अब्दुल उज्जा यानी बंदे उज्जा एक मुशरकाना नाम था और कुरान में ये पसंद नहीं किया गया कि उसे इस नाम से याद किया जाए। तीसरे ये कि उसका जो अंजाम इस सूरत में बयान किया गया है उसके साथ उसकी ये कुन्नियत ही ज्यादा मुनासिबत रखती है। तब्बत यदा अबी लहब के मानी बाद मुफस्सरीन ने टूट जाए अबू लहब के हाथ बयान किए हैं और वतब का मतलब ये बयान किया है कि वो हलाक हो जाए या वो हलाक हो गया। लेकिन दर हकीकत ये कोई कोसना नहीं है जो उसको दिया गया हो बल्कि एक पेशिनगोई है जिसमें आइंदा पेश आने वाली बात को माजी के सीगों में बयान किया गया है। गोया उसका होना ऐसा यकीनी है जैसे वो हो चुकी और फिलवाक़े आखिरकार वही कुछ हुआ जो इस सूरत में चंद साल पहले बयान किया जा चुका था। हाथ टूटने से मुराद जाहिर है कि जिस्मानी हाथ टूटना नहीं है बल्कि किसी शख्स का अपने उस मकसद में कतई नाकाम हो जाना है जिसके लिए उसने अपना पूरा जोर लगा दिया हो। और अबू लहब ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत को जक देने के लिए वाकई अपना पूरा जोर लगा दिया था। लेकिन इस सूरत के नुज़ूल पर 7-8 साल ही गुजरे थे कि जंग बद्र में कुरैश के अक्सर बेशतर वो बड़े बड़े सरदार मारे गए जो इस्लाम की दुश्मनी में अबू लहब के साथी थे। मक्के में जब इस शिकस्त की खबर पहुंची तो उसको

0: Move for 10 आ गया है, This Girl Can का नया चैलेंज, जिसमें हर कोई शामिल हो सकता है। बस 10 मिनट मूव करें, महीने में 10 दफा। मुझे तो अब ज्यादा ही एनर्जी फील हो रही है और कॉन्फिडेंस भी।
1: अब मेरी नींद भी पहले से बेहतर है। सुबह की हल्की सी स्ट्रेचिंग हो या पार्क में तेज वॉक, कोई प्रेशर नहीं, कोई स्ट्रिक्ट स्केड्यूल नहीं। जब आपके लिए ठीक हो बस मूव करें। मैं पहले ही 3 सेशंस कर चुकी हूँ और बहुत अच्छा फील कर रही हूँ। पूरे मुल्क की खवातीन इस महीने 10 मिनट 10 दफ़ा मूव कर रही हैं। आप भी ज्वाइन करें, सर्च करें दिस गर्ल कैन मूव फॉर 10।

0: Let me remember you in wealth and poverty.
1: When life gets busy
2: and when family life gets complicated,
1: there's always a reason to talk. जब जिंदगी आपको शहद देती है और यही जिंदगी आपको खट्टे खट्टे लीमू देती है तो आप हमें ज्वाइन करते हैं
2: Every Wednesday from 10 till 11 on Inspire FM for Family Matters.
1: A show bringing real conversation, practical advice.
2: मैं हाजरा खान और मेरे साथ हैं अफशान इरफान. ज्वाइन करें हमें हर बुध सुबह 10 से 11 बजे Inspire FM 105.1 पर.
3: Du'as from the Quran and Sunnah. Du'a for when you wake up.

0: Enjoy quality and tasty 100% authentic halal Chinese and Thai food from Gao Express. Brought to you by the team behind Top's Pizza in Luton. Choose from all your delicious Chinese and Thai favourites. Then order for delivery or collection from Gao Express in Wellington Street, Luton, Marketplace Stevenage, and now also on Nightingale Road in Hitchin. Open daily midday till late. Find the number or order online at Gao, that's G-A-O, express.co.uk or like Gao Express on Facebook.
1: अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम किरण है। कोट कश्मीर ऑर्फेंस रिलीफ ट्रस्ट मेरा एक खूबसूरत घर है, जहां मेरे साथ सैकड़ों यतीम और बेसहारा बच्चों की तालीम व तरबियत और पुरसकून माहौल में परवरिश हो रही है, और ये सब कुछ आपके तावन से मुमकिन है। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह करीम आपको सदा सलामत रखे, और उम्मीद है कि आप इसी तरह अपना प्यार मोहब्बत और तावन जारी रखेंगे। कोट यूके ऑफिस 03001237474 कोट.org.uk।